ना को होई। जे बड़े आप ते बड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसार है ते कम जात, नानक नावें बाज सनात। राग गूजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई। कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदेव मौकौ, राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के बड़ भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तास, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर स नाम न पाया, ते भाग हीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तोर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सतसंगत जित हरस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। रागू जी महला पंजवा, काहे रे मन चित वै उदम, जा आर हर जियो परिया, सैल पत्थर मैं जन त्यो पाए, तांका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ, जरन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकुर, काहे वन पौ करिया, उडे उड़िया वैसै को साध पाछ बचरे शरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बालू सद बल जाई है, तेरा अंत न पारा वरिया। रागा समहला चौथा, सो पुरख को ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमागम पारा, सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजने हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसार निहारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कड़ कड़ अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा, जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्यावहे हर त्यावै तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पहे जन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरपहु जिन हर निरपहु त्याया जी, तिनका

भगत से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जे बड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावै सोही वरतै जी तू आपे करहे सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई अस महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तुम देहे सोई हो पाई रहाउ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें तन अमृतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया ओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाही जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर से व्यतन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आप ही करता तेरा किया सब होय तुद बिन दूजा अवर न कोई तू कर कर वेख जाने सोई जन नानक गुरमुख प्रगट होया समहला पहला तित सर्वरड़ पहिले निवास पाणी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबी अले मन एक ना चेत स मूड मना हर बिसरा तेरे गुण गलिया रहा ना हो जती सती नी पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया सा महला पंजवा पही प्राप्त मानुख देहोरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज के बल नाम सरंग जाम लाग पवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाऊ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधन जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधन जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा कव्यो बाच बेनती चौपाई पातशे दसवीं हमरी करो हाथ दैर छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कहावो आप हाथ दै मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दै करे ऐसा भैरन को वाज संगरे पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याऊ जो बर चहू स तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे भरे मरण कार का त्रासन भरे हुजो सदा हमारे पुछा श्री अस्तो जो करे हो रक्षा राख लिहो मो रखने हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतरदस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सगल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताही हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जछन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सगल प्रजा जने आप सवारी सिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबद कियो कड़कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछानत चिटी ते कुंज रहा स्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी

कहूं ले पाहन पूज तरयो सिर कहूं ले लिंग घरे लटकायो कहूं ले करवाच दिशा में कहूं पचा को शीश निभायो को बुतान को पूजत है पासु को मृतान को पूजन तायो कूर करे और जो सभी जग श्री भगवान को पेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कव्यो बाच बेनती चौपाई पातशाही दसवीं हमरी करो आदर इच्छा पूर्ण होए जिद की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्पा तुम काबू आप हादय मोहि बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करता रहूं मोर छानज कर दे करे सब वैरन को असंघरे पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तो मैं शाड़ को वरण ते आऊं जो भर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारी मारी है आप हाथ दे मुझे भरे है मरण काल का त्रास ने भरे है हुजो सदा हमारे पच्छा श्री असो जो करो रक्षा राख लो मो रखने हारे सैब संसार प्यारे दीन बंधु सुन के हंता तुम हो पूरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल योगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन का सब लोक सवार नमस्कार है तय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दान जचन पजायो आदन ते कवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सिवकन को सिवकन सुख दियो सतरन को पलम बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दर कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक ही पीर पिछाना कट कट के पड़ पड़ की जाना जवद कर करा करता रा प्रजा तर तब दे पारा जब कर कर तो कब हूं तो मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन सिर सब धारे आप अपनी भुज उचारे तुम सब ही ते रह तंदरालम जानत वेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील अनाद संभ तां का मूड़ उचारत भेदा जां को भेव न पावत वेदा तां को कर पानन मानत महा मूड़ कछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिंतन पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन भिन तो तेती तुमरा लखना जाए पसारा के विसरा प्रथम संसारा एक रूप अनुप सुरूपा रंग प्यो राव के भूपा हंड जजेर ज सेत जकीनी उत्पुज खान बहोर रच दीनी कहूं राजा बैठा कहूं सिमट पहो शंकर कैठा सगरी सृढ़ दिखाई चंपू आ जुगा सुरु पव रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संघरों दुष्ट जिते उठ पाता सगा मलेश करो नकाता जे अस तो तब शरणी परे तिनके दुर्ध दुख तवै मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके का निटने आए है रक्षा होए ताई सब काला दुष्ट रिष्ट टरें दत काला कृपा दिर तन जाए निहर हूं ताके ताव तन कमो हर हूं रिसद करमो सब होई दुटचा छवै सकै न कोई एक भार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम त्यारो कहां दार्द दुष्ट दुख ते रहा खड़के तुम्हें शरण तिहारी आप हादले उबारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई खड़ग के तमै शरण तिहारी आप दलिहो उबारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोग ते लिहो बचाई राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बने आईयां ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਅਮਰੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋਂ ਹਰਨਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਛਾਂ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਉਦਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤੇ ਤਖ ਹਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਵਾਣੀ ਦੇਹ ਨਿਵਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਤੁਧ ਵਾਹ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀ ਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ ਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਕਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਜਨ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਜਨ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਭਰਮ ਭੋਲੇ ਫਿਰ ਦਿਸਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮਨ ਭਿਆ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਭਾਣਾ ਪਾਵੇ

गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: साहब से, संपत दरबार राखी प्यारी मेरे करतार
1: गौड़ी महला पंजवा जन के तोर मन पछाने और कर्म लिखिया तो प्राणी रहाओ अमृत मन पूर तथाई साध का साधु तोर का शुद्ध मजाई अनक जला जैसे जो तोवे दे मैल ना उतरे शुद्ध ना ते सतगुरु भेटो सदा कृपाल हर सिमर सिमर काटिया पाओ काले मुक्त भुगत जुगत हर नाओ प्रेम भगत नानक गुण गाओ गौड़ी महला पंजवा जीवन पदवी हर के दास जिन मिलिया आत्म प्रगास